जी बिल्कुल प्रोग्राम से यो संघ दरबन और डेर जबरदस्त और डायरेक्टर शांते यानी सोंग दु दहार सरोवर वे और ते सोंग नंबर बियाड रे डायरेक्ट रुद्री में तु सरकार समक्ष लाए हो आई ओवर सरा वर सरा साइदो साइदो साइदो साइदो साइदो साइदो साइदो साइदो साइदो साइदो साइदो साइदो अच्छा गाना नोंखो पतांसा द सिंगर छे सनो मेदाय केना टिकटॉक से ड्रेस छते ओवर सेदो वसरा गरमा पये ब्लिप से दे रगलल वसरा गरमा दो ओ ये ब्लिप शेवी या होडेर जुत गरमा वी केना नुकसान की ना

के बिल्कुल आवाज कट सवा ओस बिल्कुल टिक सवा जाए अच्छा वो साढ़े बारह बजे वाला को अच्छा शाहजमार रुपए तलाई जाए अच्छा मनना शुक्रिया बच्चे ये खबर तली बहु ब्याह शाह खबर तो अच्छा संदर खाम हकीम संदर चावल अपने के फरमेश थे यूम लता उसे चावल फरमेश थे करा वो अच्छा बस इंशाल्लाह चिकन के ना फरहान गुल सुंगा जरूर जा अपने की साइडो سایلو ډیر چې تمنه کال کال بهدا بهدا مننه ډیر چې تمنه شاه جام ما وزیر ورسره رانه وزیر

सूचना मैसेज चाचा घड़ी जर जर्शा मिला वाट है ब्रो सब ही काम दे चाहिए रोना पोते ने शेख है ना फर्स्ट मैसेज रो चाह करा वही अस्सलाम वालेकुम स्वीट भाई जानी दिस इज मी वन एंड ओनली यूर फैन क्यूटर शिखान कह हालू का वाह जी वाह आप जी जनाब जी वेलकम वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हमारे गुलगुल एंड बुलबुल मोहतरम एंड हुसूजी कदरदान एंड नजवल शहिस्ता एंड हिस्ता गुल गुलाब गुलगुलाब डायमंड एंड चंबेली के चंबेली की तरह मेरे प्यारे से अनमोल लवली एंड किश मैश वी हैप्पी स्वीट भाई जानी गो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु जी वालेकुम सलाम थैंक यू सो वेरी वेरी वेरी मच लॉट ऑफ थैंक्स ट्विटर जिहानी स्वीट सिस्टर जानी तोरा दी इज्जत का बोलो रोखा बोलो यो जहान मने ना तेरे तेरी इज्जत मने शाय कदर मने शाय नेक्स्ट मी ट्विटर जिहान स्वीट भाई जानी फॉर यू पाका तुम इस तरह के स्टडी से इंतजार में इंतजार में होता क्यों प्रोग्राम था आर जे के ढेर खैस्ता अच्छा खैस्ता वीजा अच्छा प्रोग्राम ढेर खैस्ता वीजा का मैं याद ही ओके जी थैंक यू सो वेरी मच رڈیو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رقیب یو جہان منا تھینک یو سو ویری ویری مچ اینڈ موسٹ ویلکم ٹو یو

शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फुजिफा कंपनी शिफा शैम्पू इस्तेमाल कड़ी मुदू करना पमो मयन खलक और दिमो चिकिम खुजा खुजा और दिन की दी आगे वो इस्तेमाल करिए भी जोन दे पुरावे रोवड़िए भी खुदा दर तवियां चे चिका खेस्तूले गुड़े दे बदन सफ़ुई गुड़े दे सार दे विष्टों ने इलाज गुड़े दे सार दे विष्टों ने सफ़ुई गुड़े और जमन जावल से दरता तकलीफ ताए सार दे जमन जीजीना खुशलाए अड़ीजीना न खुजे पा कंपनी शिफा शैम्पू जोन दर गुड़ा और इस्तेमाल ये था डेरा गुरु ना न दो डेरा बेंगा न दो असोन रेट ये दाए असोन असोन उधर ता मिलावशी खुयूज अली जरूर इस्तेमाल का खुजिफा कंपनी शिफा शैम्पू चेतु से ये पफान पोई ओके जी दा प्रोडक्ट तुसे वाला टवेस्ता इस ससवूल जॉब लरल गुड़े नो कंपनी हेल्प लाइन नंबर 0331 397 34 34 बंद कॉल हाँ जी खिस्ता हो माँ खुता सो संगे जी खिता सो संगे दार तो हुए चिता सो संगे खिस्ता है और कना खुजेफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम तो से इस्तेमाल करी और कना का इस्तेमाल मुवी नो खिस्ता शवि वो जरूर वे रंगीना मुस्पिन शवि भी और कभी हम नवी इस्तेमाल नो जनाब गिलाओ भी आए मुना न कहे गिलाओ भी आए जुने न कहे ये दगा से तोर शन है अजी बोला तू दादा डाली भी दुआ

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी, मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।

आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज़।

हम और शराते हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज़ जो आपके दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके

सो जनाब बिल्कुल प्रोग्राम पर स्टार्ट किया ना बस अंदर है मैंने और हां चेता बनस है बिल्कुल रेडियो मन करक सराउस है मोसराउस है दस्तोरो महवल सराउस है आगे ना पास पास रोस है बिल्कुल जी प्रोग्राम भी बिल्कुल जी पर मख्त भी जी बिल्कुल मोसराउस है एंजॉय दैट है।

ओके जी, फर्स्ट मैसेज चेक कर दो जी। हेलो हेलो तारिक भैया, राज अंकल कैसे हो? शो अमेजिंग है, मौसम भी बहुत प्यारा है, शो की तरह राज अंकल अपनी आवाज में दोनों से है। अच्छा सांग गुनगुना है। अच्छा ब्याह कड़ी बार एक पड़ी वहा चलो खानो का संदर नजर होता हुए वही सलामी डॉक्टर आयजा फ्रॉम करक। ओके जी डॉक्टर आयजा, यो जहान मना थैंक यू सो वेरी मच। जिंदगी तो है, अच्छा जिंदगी तो जीना है, आई मन और की हाल है। अच्छा तुसे तो की हाल है, उम्मीद वे ठीक ठाक हो सी, तुसी बहुत अच्छे प्रोग्राम कर दे जी। और जी तुसे तो बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी साड़ी प्रोग्राम की तारीफ की थी। मन थटक यो जहान मन नहीं नड़े मन ना मन थटक ए तुसे सारे चंगे तुसनु साड़ी प्रोग्राम जड़ी चंगे लगने बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच अ लॉट ऑफ थैंक्स। आसमा सी में वही अस्सलाम वालेकुम सलाम गुड आफ्टरनून। ओके जी हाउ आर यू, शो इज नाइस कोको स्वीट बिल्कुल मेरी धरा जो आज तो प्ले कर सही था। आसमा सी भतीजी उसको बख्वाश है ना जगह बख्वाश है ना छे बिल्कुल इवनिंग प्रोग्राम के तो गिला खड़े हुआ छे रात चाचू मैसेजेस पहले शामिल कर। ओके जी पहले शामिल कर ठीक है उस बख्वाश है वही अर्शद फ्रॉम नरी मीर अब्बास खान बनु से। अच्छा सही वही चे राशा व राशा खुशी मैदान रफी रुख में रवान है सही। नौर मैसेज सीधी आबाद के शामिल हो लशी बात गए

शिव, वेलकम बैक, वेलकम बैक. यो सली बिया ठुला रुदुन का प्रोग्राम के हर काल है प्रोग्राम पो देख के हिस्से की चिदा बिल्कुल सदिकार खबर चिदा अगब कहूँ

ओके जी, एंजॉय द ट्रिक नकरीजी बिची। अच्छा नकरीजी बिची न लगी शाह न लगी। अच्छा वो लगे ठीक है, वो बोलागी उस पर वो लगी वेले बना लगी। एंजॉय द नकरीजी बिची बत्ती जी, आस मसीफ एंजॉय द ट्रिक। Stay tuned with us.

अच्छा भाई कहना चाहिए आसमा सिंह तारा खान जमाल बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। चे सिस्टर का छोटा भाई है जमाल, वो भी एक अच्छा भाई जी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह करे कि ठीक ठाक रहे।

ओके के हाँ, आज एक गजल डेडिकेट कर दो मुझे और मेरा नाम पर और हम अशना को भी। सलाम जी, वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाह वबरकातहु। यो जहान मन्ना तारा हां, थैंक यू सो वेरी मच। बार मैं सहज भाई जी चाचू पूरा दो महीने के बाद प्ले किया है। ओके जी, नो थैंक्स। ओके जी, नो थैंक्स, नो नीड थैंक्स। ओके